अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फे नला विश्वासी समक बसुगो रंग लमन परिवर्तन लसुगो जय मसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेतला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ रंगला सेम परिवर्तन लसुगो नला विश्वासित समक बबरी हसुगो तिगा तिनी रंगला लुइला हाजीबाई ग्लाम मुला जा रंगला छुटकारा तोला तिगा थेरी हाजीबाई विशेष प्रार्थना अनुरोध मुला जो जवाब रंग दाते दोना एम नाइसुगा मुला तिनी ना रंग दिदा रंगला समस्या वास्तविक छुटकारा देन रंगला प्रार्थना जवाब यांगला लागि रंगसे लाब्री हम्बा बेनन भन्दा महत्वपूर्ण ताम उन्ला रोमी 12:2 जो संसार धासरे अप्राउ तासै रंगला सिमले छार तसि पुरान रूप से परिवर्तन ताउ देन परमेश्वरला जवाब भन योग्य देन सिद्धा इच्छा तिगा हिम्बा थिएनिगदेसी सेबरी हम्ला रंग रूपान्तरित तगाई विवाह परमेश्वरला इच्छा हिम्बा तासै रूपान्तरित ताबाला अर्थ तिगा हिम्बा चुरित चमत्कारिक रूपसी रूबरी याकर्की सेग्याम अर्को सेरी परिवर्तन तब समावेश मुला रूपान्तरण ला याकर्की उदाहरण विवाह याकर्की झुसिले किरासी हरङ लसी रङदा जेव पुतली तिरा पुतली रि रूपान्तरण तामुला विवाह हिम्बा चु बाइबल 500 रङदा चु रूपान्तरण हरङ लसी याङसेला बिसी पङमुला याङसे लादोला विवाह याङला सेमदा नवीकरण लव हिम्बा देन याङसे याङला सेमदा परमेश्वरला वचन रि ताबा प्रतिज्ञा गदेरे नवीकरण लव हिम्बा याङसे थे प्रतिज्ञा गदे रङदान बारम्बार विदो मुला थेनी गदे ला बारेरी हाइमा दमन सोच लस्युगो थेन हेन्दे एनी गदे दा रङला सुमसे निरन्तर स्वीकार लस्युगो व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसाघ्याम थलागो यहुसु 1:8 व्यवस्थाला चु पुस्तक एला तिसाघ्याम थलागो तसै थे फेरी यसे दिन से ध्यान लावरी देन थे ब्रिबा बेनन ताम होसियारी छ्याम पालन लावरी देन एला ग्लामकार देरी यसे उन्नति लाला थेन्दे सफलता यङला रङला परिस्थिति ला बारेरी परमेश्वरला प्रतिज्ञाला विचार से रङला सेमद निरन्तर भर लस्युगो चु बारम्बार लस्युगो तिगा ताला विषम रङ अन अन्त चु सत्य विवा बिसी विश्वस्त ताला थेन्दे थेलिच याकर्गी लानन अद्भुत देन चमत्कारी ताम ताला रूपान्तरण ताला परमेश्वर से रङला लुइरी थे प्रतिज्ञा पुरा लाला जो परिणाम स्वरूप रङला छुटकारा ताला रङला दत्तिला परिस्थिति रि तिगा ताबन मुला विवा बारेरी रङसी रङला सेम्द परमेश्वरला दृष्टिकोण देन निरन्तर नवीकरण लाभा साचिन महत्वपूर्ण मुला देन नियमित निरन्तर आधारी थेरङ लासुगो चेक पटक रङला सेम परमेश्वरला प्रतिज्ञा दिन दिक्सी ताबानन रङसी रङला परिस्थिति ज्याभाग्यमरी परिवर्तन ताबा म्राङबरी था निन्दा 2 कुरान्थी 9:8 परमेश्वर से एनी गदे दा आशिष छोन मात्रे पिनबरी हमला ताकि एनी गदे देन हाइमा दमन नोन हरेक ताम छोन तागै तासै जब गेला लागिरी एनी गदे से छोन मात्रे पिनबरी हमला चु परमेश्वर से लस्युग प्रतिज्ञा हिन्बा चुरी बारम्बार मनन लस्युगो संसार ज्ञान रङला दिमागी पुइबा नकारात्मक ताम गदे दा सट्टा चु विचार द रङला सोचाइरी हाबी तबारिस पिन्सुगो जु चु रङला लुइरी मुक्ति याङबा ज्ञान हिन्बा याङसे सम्भव मुला विवा विश्वास मन्द फिर्क्याप्ला ताम बिरालै याङला विजयला मानसिकता अपना लसुगो बाइबल से रङला बारेरी तिगा बिमुला विवा ताम्री विश्वास लबा छनोट लसुगो देन रङला लुइ विजयरी पैन ताबा सिगो प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवान भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946 री सम्पर्क लसुगो हस्त
त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छाङमा दानु जयमसी नमस्कार।

0: এক্সেসিও
1: ল্যাব টেস্ট
0: ভিটামিন ডি
1: ভিটামিন বি টুয়েলভ
0: আইরন প্রোফাইল
1: রিএফটি লগায়তকা সম্পূর্ণ ল্যাব পরীক্ষণ
0: চৌবিশ ঘন্টা চিকিৎসক দ্বারা আকস্মিক সেবা উপলব্ধ ছ
1: অত্যাধুনিক 4D রঙ্গিন মেশিন দ্বারা জিল্লামে পহিলো পটক কলর ডোপলার কলেজকো ফাইব্রোস্ক্যান র ভিডিও এক্সরে সেবা
0: হরেক শনিবার কাঠমান্ডুবাট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকক টিম দ্বারা স্বাস্থ্য সেবা সুচারু গরিয়েকো সহর্ষ জানকারী গরাউদছৌ
1: থপ জানকারীকা লাগি সম্পর্ক নম্বর 01052283 র 01052563
0: শহীদ মেমোরিয়াল অস্পতাল নীলকণ্ঠ নগরপালিকা 3 ধাদিংবেশী ধাদিং
2: कार्यक्रमको तयारी त सबै सकियो साउन्ड सिस्टमको लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने होला
3: कहाँ हुनु नि सर हाम्रै धादिङबेसीमा रहेको सत्यदेवी साउन्ड सिस्टम सर्भिसमा सम्पर्क गर्ने हो नि
4: सत्यदेवी साउन्ड सिस्टम सर्भिस नीलकण्ठ नगरपालिका 3 मिलनचोल धादिङ
3: हामी कहाँ सभा सम्मेलन महोत्सव लोसार शुभ विवाह व्रतबन्ध आदि कार्यको लागि साउन्ड सिस्टम उपलब्ध गरिन्छ
4: सानोदेखि ठुल्ठूला कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरीय सेवा दिँदै आइरहेको एकमात्र उत्कृष्ट साउन्ड सिस्टम सत्यदेवी साउन्ड सिस्टम सर्भिस
5: प्रोपाइटर मर्नेन वाइबा सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98510 97838 र 98032 40723
6: अफिसको डेकोरेसन त सबै सकियो अब अफिसको लागि चाहिने कम्प्युटर ल्यापटप सिसी क्यामेरा प्रिन्टर लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न पर्ने कहाँ गएर किन्ने होला
2: छैन सर के सोचिरहनु भएको छ
6: हेर न बाबु अफिसको डेकोरेसन त सबै सकियो यो टेक्निकल सामानहरू किन्नु पर्ने कहाँ गएर किन्ने होला
2: ल सर हाम्रै धादिङबेसी बिच बजारमा सुसमर्पण कम्प्युटर सेन्टर भएपछि के को चिन्ता
3: सुसमर्पण कम्प्युटर एन्ड मोबाइल सप हामी कहाँ नयाँ पुराना डेस्कटप कम्प्युटर ल्यापटप सिसी क्यामेरा प्रिन्टर युपिएस इन्टरनेट जडान टोनर रिफिल मोबाइल बिक्री तथा मर्मत गरिनका साथै कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ
6: सुसमर्पण कम्प्युटर एन्ड मोबाइल सप नीलकण्ठ नगरपालिका 3 बेच बजार धादिङ सम्पर्क नम्बर 98 51 10 88 78 र 98 088 88 778
7: विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँहरूको सेवामा समर्पित न्यू टिपटप ह्यान्डिक्राफ्ट सिद्धलिक गाउँपालिका 1 बैरेनी धादिङ हामी कहाँ विभिन्न स्कूल कलेज संघ संस्थाका ट्र्याकसुट तथा रेडिमेड सामान पाइनुका साथै धादिङ गोर्खा चितवन र नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरूमा सामान डेलिभरीको समेत सुविधा रहेको छ प्रोपाइटर रामजी परियार फोन नम्बर 98 41 68 67 64 98 41 68 67 64
8: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।

लस्सो हे मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नग फारममा असिम टमाटर की ट्रनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा भोले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी टिम फिटिङ सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यङबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रङयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असेम 98511-87-882 फोन सेन्जिम सेगो है रोमा।